0: This is Tune India Radio, and it's time for the news world over.
1: Good morning. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. The Election Commission has ordered a repoll at 15 polling stations in West Bengal. In India, Trump expressed dissatisfaction with a new Iran proposal sent through Pakistan. In Australia, the alleged killer of a 5-year-old girl has been moved to Darwin after riots. Former Queensland Premier Anastasia Palaszczuk's surgeon partner has been charged with rape. World news: Trump announced to Congress that the Iran war has officially terminated. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। ग्रैंड बर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। ग्रैंड बर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: radiotuneindia.com.au 24/7।
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सूरदास का विचार। तन मन धन सब अर्पण कर सूर के श्याम रिझायो, प्रेम सुधा में डूब के जीवन सफल बनायो। मतलब संपूर्ण समर्पण से ही भक्ति का स्वाद मिलता है। सोचिए, क्या हम भी खुद को पूरी तरह समर्पित कर पाए हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
5: Australia, I am Salman Khan and keep listening to Tune India Radio.
6: Playing only the best hits.

एक पतली एक भारी, हो पहाड़ी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी, के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई, जद खिंच के हो जद खिंच के छेड़ने अख मारी।

नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो

0: हेलो, मैं मोनी रॉय बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
1: जब नजरें मिली बेवजह पहली बार, जब इत्तेफाक से मुलाकात हुई अगली बार, तो ढूंढने लगा बहाने मिलने को बार।

जब तेरी मुस्कान से रोशन हुई मेरी डगर, जब तेज हुई तुम्हारी सांसें और तेरे नैनों में था डर, तो संभाला था मैंने खुद को मगर तुम ही बताओ दिलबर, कैसे ना होगा इश्क तुमसे, क्यों ना होगी मोहब्बत तुमसे।

अरमान दे दूं, अपने हिस्से के सारे अरमान दे दूं, इतना पागल हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम मांगो दिल तो मैं जान दे दूं। एक

0: आपका पसंदीदा संगीत स्टेशन
1: बाला भैया की सुबह की खुशी में पेश है सोनी बैंड की खास पेशकश, सुनिए।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good afternoon. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. The Supreme Court has closed the TMC plea regarding centre-appointed counting officers. India has launched a disaster information system, sending test alerts to citizens' phones. In Australia, Kumanjayi little baby's relatives express grief as charges are foreshadowed. The Liberal Party is fighting to retain a seat in the Nepean by-election against One Nation. In world news, Trump has ordered the withdrawal of 5,000 US troops from Germany. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर
3: 24/7.

सलाम नमस्ते दोस्तों, दिस इज तेजस्विनी एंड यू आर ऑन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हु आर यू के मैं कल एक हिंदी फिल्म देख रही थी और वो बहुत पुरानी थी, शायद फ्रॉम द 60s 70s, आई एम नॉट श्योर, बट एनी वे इट हैड मेडली ऑफ एक्टर्स, इट हैड जितेंद्र, इट हैड मुमताज, नूतन, आई डोंट नो, अशोक कुमार एंड सो मेनी अदर्स। एनी वेज, बट आई वोंट गो इन टू द स्टोरी ऑफ द मूवी, बट I'll just tell you, every time the hero or the heroine or someone आके इस औरत को मिलता था ना और पैर छूते थे, जैसे कि हम करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, छूते थे, तो this lady would be like, खुश रहो, खुश रहो। And she said it so often, I mean, you know, as I said, इतने सारे actors थे and all of that, and throughout the movie, I heard this आशीर्वाद being given, खुश रहो, खुश रहो। And that made me think, कि क्या कभी सोचा है कि किस तरह से खुश रह सकते हैं? नाउ हैप्पीनेस मे बी एन इमोशन, बट बीइंग हैप्पी इज अ, बिसाइड्स बीइंग एन आशीर्वाद, सीम्स टू बी अ चॉइस। सो इट दैट इज व्हाट ब्रॉट मी टू दिस टॉपिक ऑफ ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू चूज हैप्पीनेस। देयर मस्ट बी सम वे ना, मैंने हैप्पीनेस के बारे में शो किया हुआ है, बट हाउ टू चूज हैप्पीनेस एज एन एटीट्यूड इज वॉट आई एम लुकिंग टू एक्सप्लोर टूडे। नाउ फॉर मैनी इट कैन बी सीन एज अ चॉइस बिकॉज इट डज इन्वॉल्व मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन्स अबाउट थॉट्स, एक्शंस एंड पर्सपेक्टिव, रादर देन पैसिवली वेटिंग फॉर इट टू अराइव। यू नो, जैसे खुशियाँ आएंगी तो हम ये करेंगे, काइंड ऑफ ये डायलॉग भी सुना होगा आपने फिल्मों में। You can actually cultivate happiness even in challenging circumstances. And how do you do that? By choosing to focus on positive aspects, like perhaps practicing gratitude, engaging in activities that bring peace and joy your way. And mind you, this is an ongoing process. It's almost like work in progress, if you may. It isn't something that we stumble into, you know, galti se mil gaya kind of a thing. No, we don't stumble into it, but something we train our hearts to do even on our worst days. Bahut baar hum sunte nahi hai logon ko ke you need to choose happiness. Sometimes when you're sad or down on yourself, people say to you, you need to choose happiness, boss, you can't be like this. But when they say you need to choose happiness, it's almost like it was hiding somewhere, like in a job or in a bank account or in a relationship or even vacations. Mujhse poocho, the real happiness has got little to do with what is happening around me and everything to do with what is happening inside of me. And definitely, this is not a personality trait, dosto, or a characteristic of our being. अगर हम साइकोलॉजी या पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें, खुश रहना या चूजिंग हैप्पीनेस, और रादर जस्ट हैप्पीनेस, नॉट चूजिंग हैप्पीनेस, आई कुड जस्ट से हैप्पीनेस हैज अ डेफिनेशन, एंड इट इज डिफाइंड एज एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट, यू नो, पॉजिटिव इमोशंस लाइक जॉय, प्राइड, लाइफ सेटिस्फैक्शन, एंड देन अ लिटल लेस ऑफ एंगर, सैडनेस एंड एंग्जाइटी, टू पुट इट लूजली। आई मीन, इफ यू वर टू लुक अप पॉजिटिव साइकोलॉजी, इट विल गिव यू 50,000 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, बट फ्रॉम वॉट आई हैव गैदर्ड, दिस इज वॉट इट मीन्स। इट जस्ट मीन्स चूजिंग फ्रीक्वेंट पॉजिटिव इमोशंस एंड लेस ऑफ एंगर, सैडनेस एंड एंग्जाइटी, विच सीम टू बी मोर लाइक नेगेटिव इमोशंस। पर मुझे ये भी लगता है कि ये एक डेली डिसीजन है। हर रोज जब भी आप उठते हो ना, सुबह उठते ही, आई हैव ऑफन टोल्ड यू ऑल दैट आई एक्चुअली प्रैक्टिस दिस यू नो, द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट आई फील व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। आई ऑलवेज थैंक माय गॉड फॉर गिविंग मी अनदर डे। सो इट्स लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड चूजिंग योर एटीट्यूड फॉर द डे, विच इज हैप्पीनेस। नाउ नो वन वुड चूज टू बी अनहैप्पी, यू विल से, है ना? मैं भी यही सोचती हूँ कि वाई वुड एनी वन चूज टू बी अनहैप्पी। एनी वन इन देयर राइट माइंड विल ऑलवेज चूज हैप्पीनेस ओवर बीइंग अनहैप्पी। तो देयर इन कम्स द वर्ड एटीट्यूड, देयर इन कम्स द कैच एज वेल,
Because attitude needs to be cultivated. And how do you do that? I'm thinking it can be cultivated through a mindset of contentment, satisfaction. It's not something that you can, you know, just get by default, a part of your DNA, if I can call it that. So it has to be worked on. So instead of dwelling on what could be, appreciating your present moment and the good things you already have might be a way to go. Practicing so that it becomes an ability, becomes a second nature, is what I'm thinking. Aaiye ek gana sunte hain and then we will come back to this topic.

रीफ्रेमिंग एडवर्सिटी, लाइक जब भी उसके उनके लाइफ में कुछ हार्डशिप आया है, ही हैज एक्चुअली रीफ्रेज्ड इट, रीफ्रेम्ड इट इनटू थिंकिंग, ओके, हियर्स द ग्राउंड फॉर मी टू एक्चुअली ग्रो फ्रॉम, हियर्स द ग्राउंड फॉर मी टू चेंज एंड इम्प्रूव. सो हिज रीफ्रेम्ड एडवर्सिटी नॉट बिकॉज लाइफ इज परफेक्ट, बट बिकॉज हिज आउटलुक राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड हैज डिटरमिंड हाउ ही हैज लिव्ड एंड ही कंटिन्यूज डूइंग दैट. सो आई एम होपिंग दैट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेटिट्यूड कैन एक्चुअली रीवायर योर थिंकिंग, योर ब्रेन दैट इज, एंड देयरफॉर रीवायर योर वाइफ, योर नॉट योर वाइफ, आई बेग योर पार्डन, सॉरी फॉर गिविंग होप टू ऑल दोज हस्बैंड्स आउट देयर, नॉट रीवायर योर वाइफ, रीवायर योर लाइफ. आई थिंक आई नीड अ ब्रेक, आई एम ट्राइंग टू स्टॉप मायसेल्फ फ्रॉम कॉफिंग. And I think I'm mixing up words. But thank you so much for bearing with me.

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news world over.
1: Good afternoon, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. The Supreme Court has closed the TMC plea regarding centre-appointed counting officers. India has launched a disaster information system, sending test alerts to citizens' phones. In Australia, Kumanjayi little baby's relatives express grief as charges are foreshadowed. The Liberal Party is fighting to retain a seat in the Nepean by-election against One Nation. In world news, Trump has ordered the withdrawal of 5,000 US troops from Germany. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए kerawanshow.com.au पर। We play your new and
3: old। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का रहीम का विचार। रहीमन विपदा हो भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोए। मतलब कठिन समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन नहीं। सोचिए, क्या हमने मुश्किल समय को गुरु की तरह अपनाया है? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
4: हेलो ऑस्ट्रेलिया, आई एम रानी मुखर्जी एंड कीप लिसनिंग ट्यून इंडिया रेडियो
5: 24/7। थैंक यू म्यूजिक
6: ट्यून इंडिया रेडियो।

0: हेलो, मैं मोनी रॉय बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो।
1: तबा तबा कर गया, तबा तबा दे गया, दगा दगा।

0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे। कौन है जो

0: भोले वाले ललुआ भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में हो

इतने में सूरज डूब गया राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कला की जाग उठी। धा धा तय कै थूंगा धागे से

फवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप फवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good evening. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. The Supreme Court has closed the TMC plea regarding centre-appointed counting officers. A heartbreaking photo from the Baghi Dam tragedy has been declared fake by the Jabalpur collector. In Australia, relatives of Kumanjai Little Baby express grief as charges are foreshadowed. Counting is underway in the Nepean by-election as the Liberal Party fights to retain the seat. The US plans to cut troop levels in Germany by 5,000 amid tensions with Trump. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए कैरावैन शो .com.au पर।
3: Global Hits, Tune India Radio, music non-stop.

सलाम नमस्ते दोस्तों, दिस इज तेजस्विनी एंड यू आर ऑन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। हु आर यू के मैं कल एक हिंदी फिल्म देख रही थी और वो बहुत पुरानी थी, शायद फ्रॉम द 60s 70s, आई एम नॉट श्योर, बट एनी वे इट हैड मेडली ऑफ एक्टर्स, इट हैड जितेंद्र, इट हैड मुमताज, नूतन, आई डोंट नो, अशोक कुमार एंड सो मेनी अदर्स। एनी वेज, बट आई वोंट गो इन टू द स्टोरी ऑफ द मूवी, बट I'll just tell you, every time the hero or the heroine or someone आके इस औरत को मिलता था ना और पैर छूते थे, जैसे कि हम करते हैं, बड़ों के पैर छूते थे, तो this lady would be like, खुश रहो खुश रहो। And she said it so often, I mean, you know, as I said, इतने सारे actors थे and all of that, and throughout the movie, I heard this आशीर्वाद being given, खुश रहो खुश रहो। And that made me think कि क्या कभी सोचा है कि किस तरह से खुश रह सकते हैं। नाउ हैप्पीनेस मे बी एन इमोशन, बट बीइंग हैप्पी इज अ, बिसाइड्स बीइंग एन आशीर्वाद, सीम्स टू बी अ चॉइस। सो इट दैट इज व्हाट ब्रॉट मी टू दिस टॉपिक ऑफ ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू चूज हैप्पीनेस। देयर मस्ट बी सम वे ना, मैंने हैप्पीनेस के बारे में शो किया हुआ है, बट हाउ टू चूज हैप्पीनेस एज एन एटीट्यूड इज वॉट आई एम लुकिंग टू एक्सप्लोर टूडे। नाउ फॉर मैनी इट कैन बी सीन एज अ चॉइस बिकॉज इट डज इन्वॉल्व मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन्स अबाउट थॉट्स, एक्शंस एंड पर्सपेक्टिव, रादर देन पैसिवली वेटिंग फॉर इट टू अराइव। यू नो, जैसे खुशियाँ आएंगी तो हम ये करेंगे, काइंड ऑफ ये डायलॉग भी सुना होगा आपने फिल्मों में। You can actually cultivate happiness even in challenging circumstances. And how do you do that? By choosing to focus on positive aspects, like perhaps practicing gratitude, engaging in activities that bring peace and joy your way. And mind you, this is an ongoing process. It's almost like work in progress, if you may. It isn't something that we stumble into, you know, galti se mil gaya kind of a thing. No, we don't stumble into it, but something we train our hearts to do even on our worst days. Bahut baar hum sunte nahi hai logon ko ke you need to choose happiness. Sometimes when you're sad or down on yourself, people say to you, you need to choose happiness, boss, you can't be like this. But when they say you need to choose happiness, it's almost like it was hiding somewhere, like in a job or in a bank account or in a relationship or even vacations. Mujhse poocho, the real happiness has got little to do with what is happening around me and everything to do with what is happening inside of me. And definitely, this is not a personality trait, dosto, or a characteristic of our being. अगर हम साइकोलॉजी या पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें, खुश रहना या चूजिंग हैप्पीनेस, और रादर जस्ट हैप्पीनेस, नॉट चूजिंग हैप्पीनेस, आई कुड जस्ट से हैप्पीनेस हैज़ अ डेफिनेशन, एंड इट इज डिफाइंड एज एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट, यू नो, पॉजिटिव इमोशंस लाइक जॉय, प्राइड, लाइफ सेटिस्फैक्शन, एंड देन अ लिटल लेस ऑफ एंगर, सैडनेस एंड एंग्जाइटी। टू पुट इट लूजली, आई मीन, इफ यू वर टू लुक अप पॉजिटिव साइकोलॉजी, इट विल गिव यू 50,000 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस, बट फ्रॉम वॉट आई हैव गैदर्ड, दिस इज वॉट इट मीन्स। इट जस्ट मीन्स चूजिंग फ्रीक्वेंट पॉजिटिव इमोशंस एंड लेस ऑफ एंगर, सैडनेस एंड एंग्जाइटी, विच सीम टू बी मोर लाइक नेगेटिव इमोशंस। पर मुझे ये भी लगता है कि ये एक डेली डिसीजन है। हर रोज जब भी आप उठते हो ना, सुबह उठते ही, आई हैव ऑफन टोल्ड यू ऑल दैट आई एक्चुअली प्रैक्टिस दिस यू नो, द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट आई फील व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। आई ऑलवेज थैंक माय गॉड फॉर गिविंग मी अनदर डे। सो इट्स लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड चूजिंग योर एटीट्यूड फॉर द डे, विच इज हैप्पीनेस। नाउ नो वन वुड चूज टू बी अनहैप्पी, यू विल से, है ना। मैं भी यही सोचती हूँ कि वाई वुड एनी वन चूज टू बी अनहैप्पी। एनी वन इन देयर राइट माइंड विल ऑलवेज चूज हैप्पीनेस ओवर बीइंग अनहैप्पी। तो देयर इन कम्स द वर्ड एटीट्यूड, देयर इन कम्स द कैच एज वेल।
Because attitude needs to be cultivated. And how do you do that? I'm thinking it can be cultivated through a mindset of contentment, satisfaction. It's not something that you can, just get by default, a part of your DNA, if I can call it that. So it has to be worked on. So instead of dwelling on what could be, appreciating your present moment and the good things you already have might be a way to go. Practicing so that it becomes an ability, becomes a second nature, is what I'm thinking. Aaiye ek gana sunte hain and then we will come back to this topic.

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good evening. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. The Supreme Court has closed the TMC plea regarding centre-appointed counting officers. A heartbreaking photo from the Baghi Dam tragedy has been declared fake by the Jabalpur collector. In Australia, relatives of Kumanjai Little Baby express grief as charges are foreshadowed. Counting is underway in the Nepean by-election as the Liberal Party fights to retain the seat. The US plans to cut troop levels in Germany by 5,000 amid tensions with Trump. That's all for now. Stay tuned for more.
2: Hi, this is Amir Khan and you're listening to Tune India Radio.
3: Namaskar. Aaiye sunte hain aaj ka Kabir ka vichar. तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोए, साधन सब छाड़कर मन ही माही समाए. मतलब सच्चा साधक वही है जो मन को साध ले. सोचिए, क्या हम बाहर दिखावा कर रहे हैं या भीतर साधना कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो. फिर मिलेंगे.
2: सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਊਨ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ. ਟਿਊਨ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟਿਊਨ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ.

जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।

0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी, अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो,
0: यू मैं क्या बोलूं जी, यू टेल मी
1: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी मैं क्या बोलूं जी।
2: ओ बाप
1: अल्लाह, इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गाकर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news world over.
1: Good morning, this is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. The Election Commission has ordered fresh polling in West Bengal's Falta constituency. India has launched a new cell broadcast system for emergency alerts nationwide. The Liberals have claimed victory in the Nepean by-election ahead of the state poll. A woman has been accused of setting a police car on fire during a riot in Alice Springs. Germany says the US troop withdrawal is foreseeable as NATO seeks clarification. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.au पर।
3: ब्रॉडकास्टिंग लाइव वर्ल्ड वाइड। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सूरदास का विचार। लाग्यो मोल अनमोल जस नयनन से मन मोही, सूरदास तब जानिए जब ही की गति को खोही। मतलब जब मन भगवान में लीन हो जाए तब ही सच्चा प्रेम होता है। सोचिए, क्या हमने मन को समर्पित करना सीखा है? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। फिर मिलेंगे।
4: हेलो, मैं इरफान और आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो। सुनते रहिए
5: 24/7 playing your music।
6: ट्यून इंडिया रेडियो।

0: This is Tune India Radio, and it's time for the news headlines.
1: Good morning. This is Rishi on Tune India Radio with your hourly news headlines. West Bengal elections, TMC and BJP clash over EVM security ahead of counting. The ECI tells the Supreme Court that a state nominee will be present during vote count. Liberals claim victory in the Nepean by-election, boosting their position ahead of the state poll. Tragedy in Sydney, as three are dead and a man is arrested following a home incident. Germany states that the US troop withdrawal is foreseeable as NATO seeks clarification. That's all for now. Stay tuned for more.
2: क्या आप तैयार हैं अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए? इसकी शुरुआत हो रही है सबसे पहले क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट में। यहाँ देखिए सैकड़ों कैरावैन्स, कैंपर्स और कैंपिंग प्रोडक्ट्स। पाइए एक्सक्लूसिव शो डील्स और अपने अगले सफर के लिए ढेरों आइडियाज। ये पूरे परिवार के लिए मस्ती भरा दिन होगा। टिकट सिर्फ $13 से शुरू और 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। क्रैनबर्न कैरावैनिंग एंड एडवेंचर लेजर फेस्ट, शुरुआत यहां से, मंजिल कहीं भी। क्रैनबर्न रेस कोर्स 8 मई से 10 मई तक। टिकट्स लीजिए caravanshow.com.
3: TuneIndiaRadio.com.au, your favorite music station.
4: नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का कबीर का विचार। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। मतलब दुनियादारी के दो पार्टों में इंसान पिसता है, संतुलन जरूरी है। सोचिए, क्या हम भी किसी दबाव में पीस रहे हैं? आप सुन रहे हैं ट्यून इंडिया रेडियो, फिर मिलेंगे।
5: हाय, मैं हूं मंजूर सिंह और आप सुन रहे हैं मुझे ट्यून इंडिया रेडियो पर।

सलाम नमस्ते दोस्तों, दिस इज आलिया बैक विद वा आ बैक विद यट अनदर सेगमेंट वन अदर सेगमेंट आई वाज सेइंग नो यट अनदर सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जस्ट फॉर यू ऑल. होप यू गाइस हैड एन अमेजिंग वीकेंड. ऑफ कोर्स इट्स वेडनेसडे टुडे मिड वीक, टू मोर डेज ऑफ वर्क एंड देन वी आर बैक ऑन टू अनदर वीकेंड. शॉर्ट वीक का अपना ही कुछ मज़ा होता है, अलग ही लेवल का मज़ा यू कुड से. एनीवेज, जो लॉन्ग वीकेंड मिला उस वीकेंड में माय हस्बैंड एंड आई डिसाइडेड टू डू समथिंग लाइक यू नो फॉर आवर सोल्स रादर देन फॉर आवर बॉडीज और माइंड्स. सो वी डिसाइडेड टू गो टू अ टेम्पल और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ कुछ डिस्टेंस पर इस्कॉन का हरे कृष्णा टेम्पल है. हम अक्सर जाते हैं वहाँ पे और जब भी जाते हैं वी कैरी सम काइंड ऑफ एन ऑफरिंग बिकॉज इट फीड्स सो मैनी डिवोटीज एंड इवन नॉन डिवोटीज फॉर दैट मैटर. एवरी वंस वेलकम, डजेंट मैटर अबाउट योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्रेफरेंसेस इन लाइफ और वॉट एवर इट इज, एवरी वन इज वेलकम देयर. तो इतने सारे लोगों को फीड करना, और फीड क्या, जब भी वो कुक करते हैं वो फीस्ट ही होता है. तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ले जाते हैं, जैसे कि स्कोर्स ऑफ अदर डिवोटीज. इस बार जब हम जाके रख रहे थे जो सामान हम ले गए थे, तो माई हस्बैंड मेड अ नोट दैट द पैंट्री इज एब्सोल्युटली ओवरफ्लोइंग एंड स्टॉक्ड विद एवरीथिंग यू कुड पॉसिबली थिंक ऑफ. एंड ही रिमेंबर्ड अ टाइम मेनी ईयर्स अगो व्हेन द पीपल देयर इन द डेज गॉन बाय यू कुड गो एंड लाइक यू नो स्टे देयर. इट यूज्ड टू बी एन होम स्टे of some kind and you could go and stay there. And my husband was here alone in those days. He was studying and some years ago that is. And he was like, I'm going to go and explore this place. So he did. He came and stayed for 2 weeks during Christmas where he had a forced holiday. He didn't know what to do with himself. He didn't want to go back home. So he just decided, let me explore this region of New South Wales. He came and stayed there for 2 weeks. And he remembers the times when people would like, you know, ring ahead and say, hey, can we come and visit the temple today? And can we stay over for lunch and things like that? And everyone was welcome, as I said, even in those days. So they knew how many cars would be coming, how many people would be coming, and they would cook accordingly. Now, it's just like, you know, limitless, you could say. There are so many people. It's a struggle to even get a glimpse of the idols. And during the puja, most of us like have to stand outside and just hope that our prayers reach. Of course they do. I'm just saying. The Lord. Reach the Lord. So, or पहले तो वो लाइक यू नो वो हुंडी रहती थी एंड देन वट एवर कैश यू हैड इन योर वॉलेट इफ़ यू वॉन्टेड टू लाइक यू नो जस्ट से थैंक यू टू गॉड, नॉट दैट गॉड आस्क फॉर मनी और एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर. उन्होंने ही दिया है तो क्या मांगेंगे, जिसे दिया है उसे क्या मांगेंगे. तो बट ये हमारी श्रद्धा है ना कि हम खाली हाथ नहीं जाते टेम्पल. जाएंगे तो थोड़ा बहुत ही सही, पर कुछ ना कुछ डालेंगे हुंडी में या कुछ ना कुछ करेंगे सर्विस एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई जस्ट नोटिस दैट दे नाउ हैव दिस एफपॉस मशीन विच हैव नेवर सीन इन अ टेम्पल बिफोर. बट दैट्स सच अ गुड आइडिया बिकॉज लॉट्स ऑफ टाइम्स स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली विद ऑस्ट्रेलिया पुशिंग फॉर अ कैशलेस सोसाइटी, ऑल द बैंक्स पुशिंग फॉर कैशलेस सोसाइटी, आई एम थिंकिंग दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड. तो उन्होंने पहले से ही एफपॉस मशीन रखी है. सो इफ यू कान, इफ यू डोंट हैव कैश, फील फ्री टू टैप योर कार्ड. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग के यू नो के आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड के ऐसे क्यों किया, लाइक यू नो इन द सैंक्टिटी ऑफ द टेम्पल यू गॉट दैट एफपॉस मशीन ब्लिंकिंग अवे. So my husband said, do you think like giving to the temple is losing? Is that why you're asking? And I was like, no, I would never think that. Hame aksar lagta hai ki giving time means less time for ourselves. Yeah, giving kindness means emotional effort hoga. Phir giving support means carrying someone else's burden. Ya phir, you know, giving to even like, hame lagta hai na ki bhagwan thodi mangte hai. To wahan pe agar hum like, you know, $20-$50 दिए तो वो क्या राइट हैंड में जाएंगे, क्या वो सही इस्तेमाल होंगे. ऑफ़ कोर्स इस्कॉन टेम्पल में गलत इस्तेमाल क्यों होगा,
किस तरह से गलत इस्तेमाल होगा, किसी को फीड करने के लिए जाएगा, बट दिमाग में ख्याल आते हैं बिकॉज हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जब भी आप चैरिटी करो आप देखो किसके लिए चैरिटी कर रहे हो. द चैरिटी हैज़ टू बी डन द राइट वे एंड इट हैज़ टू गो इन टू द राइट हैंड्स, अदरवाइज उससे जो निकलता है ना, अगर गलत हाथों में गया या गलत कामों में इस्तेमाल किया या गलत बंदे पे आपने चैरिटी की, देन वो जो आगे जाके पाप होंगे उसके हाथों से या उस कर्म से वो आपको आपके ऊपर आ जाएंगे. एंड दैट हैज़ समहाउ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड स्टक इन माई हेड. सो आई एम थिंकिंग कि सही जा रहे हैं ये एंड वो, विच इज़ रॉन्ग ऑफ मी टू थिंक बिकॉज इस कॉन सपोर्ट सो मैनी पीपल विद द मील्स एंड एवरी थिंग एंड द स्पिरिचुअल टॉक्स एंड सच. तो माई हस्बैंड सेड द मोर यू गिव द मोर यूल गेट एंड आई गॉट इरिटेटेड बाय दैट एंड आई वॉज लाइक आई वुड नेवर एवर क्वेश्चन वाई यू गेव आर्म्स टू अ बेगर और लाइक यू नो चैरिटी या डोनेशन इन अ टेम्पल ऑफ फॉर अ गुड कॉज. देन ही वॉज लाइक काइंडनेस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप अ लाइव नो मैटर वॉट यू सी अराउंड यू. Just because the world, it doesn't seem to be a kind place more often than not, it doesn't mean that you lose that streak within yourself, is what he said to me. And that gave me an idea as to what I really should be discussing with y'all. Now, I didn't have to tell you the entire story. I could have just jumped into the topic and started with it, which is probably the best way to go. But I just thought to myself, मेरे ये सारे थॉट्स जो है ना, आई हैव टू अनबर्डन इट एंड दैट्स द एंटायर पर्पज ऑफ दिस टॉक, कि अनबर्डन माई थॉट्स, मेरा दिमाग खाली हो जाना चाहिए. सो आई थॉट आई अनबर्डन दोज थॉट्स ऑन यू ऑल एंड गेट यू ऑल थिंकिंग. एनी वे, सो मुझे पता है कि गिविंग इज़ नॉट लूजिंग. किसी और के लिए कुछ करने से हमारा कम नहीं होता, इनफैक्ट बढ़ ही जाता है. फॉर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल इन द वर्ल्ड, आई वुड से दैट ब्यूटी कम्स फ्रॉम काइंडनेस, नॉट बिकॉज लाइफ हैज़ बीन ईजी फॉर देम, बट बिकॉज दे कंटिन्यू टू ऑफर वॉर्म इवन आफ्टर हार्डशिप. एंड दैट इज़ वॉट ब्रिंग्स आउट द ब्यूटी इन देयर पर्सनैलिटी और देयर यू नो इन देयर डिमीनर, यू कुड से. देयर समथिंग डीपली ह्यूमन अबाउट पीपल हु स्टिल चूज टू बी काइंड आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट. I mean, they themselves are at the receiving end of something really harsh or really disrespectful or bad. But in spite of that, they'll turn around and be kind to someone. You know, being compassionate after pain or to give hope to someone after suffering from heartbreak. So, why does the heart that shines for others rarely become empty is what I thought, because those were my husband's words and I thought I'm going to create a topic out of this. What if kindness wasn't something that drained you? I mean, it does when you take on too much, but not generally. What if it's something that actually kept you alive from the inside? You know, आपके अंदर का इंसान जिंदा रहता है या फिर सडनली जाग जाता है और फिर वो खुशी खुशी रहता है. आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर के इंसान को जिंदा रखता है. वॉट इफ एवरी टाइम आपने किसी को इनक्रेज किया या कंफर्ट किया या सिंपली शोड अप वेयर इट मैटर्ड एंड वेन इट मैटर्ड, आप अपने आप यू वर इन गिविंग अवे योर लाइट बट एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग इट. बिकॉज इन अ वर्ल्ड जो हमें बहुत बार सिखाता है टू प्रोटेक्ट आर सेल्व्स, इनफैक्ट फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न वी आर टॉट टू प्रोटेक्ट आर सेल्व्स इमोशनली फिजिकली इन एवरी वे. एक यू नो क्वाइट ट्रूथ ये भी है एंड दिस कीप्स अपीयरिंग थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस. आई कुड से अ हार्ट दैट शाइन्स फॉर अदर्स इज नेवर एवर ट्रूली आउट ऑफ लाइट. एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू बाबा आमटेज एग्जाम्पल और मदर टेरीसास एग्जाम्पल, बट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गिव यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम मे बी माइथोलॉजी, मे बी फ्रॉम द मूवीज दैट आई हैव वॉच्ड ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स. आई डोंट नो, वट एवर कम्स टू माइंड. सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन टू इट दोस्तों. यू आर ऑन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट विद अहिल्या एंड टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ अ हार्ट दैट शाइन्स फॉर अदर्स इज नेवर ट्रूली आउट ऑफ लाइट.

What a beautiful song. Very short, just a minute long, but I just love it, from the movie Run Bali. Anyway, we were talking about how the heart that shines for others shines the brightest. I'm Ahilya, and you're on Shade from the Heart. I think the shining heart comes from giving without keeping a score. बहुत बार होता है ना कि मैंने इसके साथ चैरिटी की, उसके साथ चैरिटी की. देर वॉज अ टाइम ड्यूरिंग द कोरोना आउटब्रेक वे पीपल ओपनली टॉक्ड अबाउट गिविंग यूजिंग द सेलिब्रिटी स्टेटस एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट नो वर दे लुकिंग टू गेट टैक्स बेनिफिट्स और वाई टॉक अबाउट हाउ मच यू गिवन एंड वॉट यू वर डूइंग. जस्ट डू इट क्वाइटली बिकॉज कोर्स ऑफ पीपल, इनफैक्ट एवरी ह्यूमन बींग इन दैट ड्यूरिंग दैट हार्ड टाइम दैट द वर्ल्ड सॉ वॉज डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स बिसाइड्स देमसेल्व्स. But anyways, many